0: ये है लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: 0208574 8410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो।
3: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: गाय का गोद।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
5: Four beers, please, garçon!
4: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
6: Budget tight, पर brand का impact बड़ा चाहिए? Leica Radio और Leica Gold लाए हैं आपके लिए.

0: परफेक्ट पैकेज, रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
1: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से तीस

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

आवे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव संख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जा।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश दिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाए।

ना के और सुनो हाँ, एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, हाँ।

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

सुना आपने? अभी ये गीत जो है ना फिल्म बॉम्बे से है, ये ध्यान से सुन लीजिए. Listen to it absolutely carefully. And these are sung by kids, by the way.

0: Angels Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट TravelHubWorld.com.
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
5: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर. हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल. अपनी टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
4: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
0: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 13-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full-board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
8: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
9: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
11: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
12: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
13: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
14: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। जिंदगी का एक और सुहाना दिन, एक और शानदार मुलाकात, संगीत की सौगात। हम चलेंगे साथ साथ संगीत के सुहाने सफर पर। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों, प्रोग्राम मनोरंजन लेकर मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। थैंक्स टू काजल, शील बी बैक ऑन मंडे मॉर्निंग। नाम पे तेरे मचल जाता है दिल, मेरे हाथों से निकल जाता है दिल, तेरी नजरों से नजर मिलती है जब, लड़खड़ाता है संभल जाता है दिल। फिर नहीं रहती किसी शय की तलब, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई तमन्ना नहीं। फिर नहीं रहती किसी शय की तलब, जब किसी के दिल से मिल जाता है दिल। उम्र गुजरी है तुम ही को पूछते, कौन कहता है बदल जाता है दिल।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica Gold. Non-stop classics.
0: साल बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, महीने बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर कहां हम बदलते हैं, कभी नहीं। वही आपके दोस्त, आपके होस्ट हम हैं।

0: ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं भाई जो कहें कि मैं बोल रहा ही नहीं तुसी ना मर्जी जोर ला लो, मैं नहीं बोल रहा भाई, बिल्कुल नहीं बोल रहा। क्या आवाज, क्या दमदार आवाज थी, और खोज के लाए थे राज कपूर साहब फिल्म बॉबी के लिए इस आवाज को। भाई चंचल साहब से मेरी मुलाकात शिमला में हुई थी और बरसों पहले हुई थी, कितना पीछे जाएं। अरे साहब वो जमाना था जब शिमला के एक थिएटर में हम लोग प्ले करने के लिए गए हुए थे, कंपटीशन था और सुदर्शन गौड़ नाम के एक व्यक्ति ऑर्गेनाइज किया करते थे वहाँ। तो भाई हमारा तो वहाँ नाटक था और चंचल साहब का प्रोग्राम था म्यूज़िक का कहीं, तो उनसे मुलाकात हुई, छोटा सा इंटरव्यू भी हो गया। तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई आपका ये गीत बॉबी फिल्म वाला मैं नहीं बोल रहा, ये तो सुपरहिट गाना था, तो भाई वो नाराज हो गए। सुपरहिट कहते हैं आप इसे, सुपरहिट? मैं सोचने लगा कि क्या गलती हो गई भैया, तारीफ ही की है। बोले ये सुपरहिट नहीं, ये गीत मेगा हिट था, मेगा हिट कहिएगा इसको। क्या बात है, थैंक यू नरेंद्र चंचल साहब। भाई दुनिया में नहीं है लेकिन आवाज तो शाश्वत है, स्वर ईश्वर है, व्यापक है, हमेशा है, जब चाहेंगे सुन लेंगे। तो साहब एक गीत तो हमने बॉबी फिल्म का आपको ये नरेंद्र चंचल की आवाज़ में सुनवाया, और भाई इससे पहले जिससे प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, दैट वाज किशोर दा एंड आशा भोसले, फिल्म स्वर्ग से सुंदर 1986 की फिल्म थी। बैक टू बैक संगीत से प्रोग्राम शुरू होते हैं और उसके बाद भाई हम आगे बढ़ते हैं आपको पाउंड का रेट बताते हुए। यस, SBI की ओर से पाउंड का रेट भारतीय मुद्रा में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं, भाई अभी भी रेट अच्छा है। अगर पैसे अपनों को हिंदुस्तान में भिजवाना चाहें तो आज का इस समय का रेट नोट कीजिए, फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 127.75 रुपीज मैक्सिमम, अधिकतम 127.75 रुपए का रेट चल रहा है। लेकिन इसके साथ कुछ और भी है, सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे। यस, ये

0: ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: दीवानावार कोई निशान ढूंढते रहे, हम तुझको यहां और वहां ढूंढते रहे, आंखों में नजर डाली न दिल में किया तलाश, मिलना कहा था तुझको और कहां ढूंढते रहे, घर बार अपना किस तरह उजड़ा खबर नहीं, हम तेरी गली तेरा मकान ढूंढते रहे, बाहर गया ही कब था तू मेरे वजूद से, जब तक हुआ ये राज आया हम तो ढूंढते ही रहे, तलाश करते रहे।
2: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और लीजिए साहब, प्रोग्राम शुरू ही हुआ कि आधा घंटा गुजर भी गया, 10:30 बज गए, यानी खबरों का वक्त हो गया है। और खबरों में भाई, एक तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मुश्किल लग रहा है क्या हिंदी में? ओके, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और भाई इसमें एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं विश्व स्तर पर। अजरबैजान में एक मेन कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा भाई, आज के दिन के साथ जो खबरें जुड़ रही हैं, आइए उन पर जरा नजर डालते हैं। आज की खास खास खबरें, लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील होने की उम्मीद है, और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बांग्लादेश ने कहा है कि भारत की ओर से लोगों को जबरन भेजने की कई कोशिशों को नाकाम किया है उन्होंने। तमिलनाडु के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के बयान की चर्चा हो रही है, क्या है देखते हैं आगे चल के। और लोकसभा के फॉर्मर स्पीकर सुभाष कश्यप का निधन हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। आइए अब जरा विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। दुबई के शाही परिवार की फॉर्मर डॉटर इन लॉ हिरासत में है, क्या वजह है भाई? दुबई के शासक के भतीजे की फॉर्मर वाइफ जेनाब जवाद अली को अरेस्ट किया गया है। जवाद अली पहले एक इंटरनेशनल जिमनास्ट रह चुकी हैं। बताया गया है कि जेनाब जवाद अली को उनके फॉर्मर हस्बैंड शेख सईद बिन मखतूम बिन राशिद अल मखतूम की शिकायत के बाद हिरासत में लिया गया। शेख सईद बिन मखतूम उनके 3 बच्चों के पिता भी हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि कोर्ट की मंजूरी से मुलाकात के समय वो बच्चों को अगवा करके ले गई। मंगलवार की रात से ही जवाद अली के परिवार और दोस्तों का उनसे संपर्क टूट गया था और वे उनके ठिकाने को लेकर के चिंतित थे। भारत से आने वाली खबरों में, मणिपुर के कांगपोकपी जिले में वायलेंस की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हमला आज शुक्रवार सुबह तड़के 4 बजे किया गया। हथियारों से लैस सस्पेक्ट्स उग्रवादियों ने लोहीबोल खुलिन गांव में अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हमलावरों ने कुछ घरों को आग भी लगा दी। फिलहाल पुलिस की टीम आसपास के इलाकों में अटैकर्स की तलाश में अभियान चला रही है। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और इसके जरिए भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि वो पिछले 8 साल में NTA की ओर से ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशंस में पेपर लीक और जो अनियमितताओं का एक श्वेत पत्र जारी करें। यानी वही अनियमितताएं होती हैं, मतलब जो सही तरह से नियमों का पालन नहीं किया गया है। भारत सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI के इन्वेस्टमेंट पर लागू टैक्स नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट मिलने पर किसी भी ब्याज या कैपिटल गेन को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। बांग्लादेश ने कहा कि भारत की ओर से लोगों को जबरदस्ती भेजने की कई कोशिशों को उन्होंने नाकाम किया है। बांग्लादेश ने कल कहा कि उसने पिछले 24 घंटों में भारत की ओर से लोगों को फोर्सली बांग्लादेश में भेजने की कई कोशिशें नाकाम की हैं। उसने सीमा के कई हिस्सों में भारतीय अधिकारियों की ओर से घुसपैठ की 10 कोशिशों का पता लगाया है। अब भारत भाई गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों को वापस भेज रहा है, लेकिन बांग्लादेश कहता है कि नहीं, वो घुसपैठ करवा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दुनिया की सबसे लंबी जमीनी सीमाओं में से बॉर्डर में से एक है, जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैली है और इसमें हर तरह की जमीन शामिल है। इससे इसकी निगरानी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेंगलुरु डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं मिलने पर कर्नाटक में कांग्रेस के नेता रामलिंगा रेड्डी ने डीके शिवकुमार की सरकार से इस्तीफा दे दिया है। भाई ये डीके जो शिवकुमार है, ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने अपनी सरकार का गठन किया और इसमें एक मंत्री रामलिंगा रेड्डी, जो डिपार्टमेंट उन्हें मिला, जो पोर्टफोलियो उन्हें मिला, उससे वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। पर साथ ही कहा है कि वो पार्टी में बने रहेंगे और एमएलए बनकर के काम करते रहेंगे। इंटरनेशनल खबरों में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए एक नया प्रपोजल रखा है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में खुद और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आमने सामने की मुलाकात की इच्छा जाहिर की है। अच्छी बात है, दोनों आमने सामने मिलें, बातचीत करें सीधी डायरेक्ट। यूक्रेनी नेता ने लिखा कि जब तक यूरोप में चल रहा युद्ध एक बार फिर अमेरिका के ध्यान का केंद्र ना बन जाए, सिर्फ इंतजार करना गलत होगा। उन्होंने कहा कि शांति केवल यूक्रेन और रूस के बीच सीधी बातचीत के जरिए ही आ सकती है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता अपने बयान की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर उनके ताज़ा बयान को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि गर्मी के कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है। पानी की कितनी दिक्कत हो रही है, उन्होंने कहा कि आजकल के समय में इतनी भारी गर्मी पड़ रही है, पानी हमारा जो आता है बीच में कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और इसके कारण कमी हो जाती है। कांग्रेस पार्टी ने पवन खेड़ा को राज्यसभा चुनावों के लिए कर्नाटक से अपना उम्मीदवार बनाया है। पवन खेड़ा भाई चर्चा में है असम के चीफ मिनिस्टर पर टिप्पणी को लेकर के, और कर्नाटक जैसे खूबसूरत राज्य से राज्यसभा के लिए उनका नॉमिनेट होना, वो कहते हैं कि मेरे लिए गर्व की बात है। और लोकसभा के फॉर्मर महासचिव सुभाष कश्यप का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल संविधान विशेषज्ञ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट सुभाष कश्यप की मृत्यु पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डॉक्टर सुभाष सी कश्यप के निधन से गहरा दुख हुआ है, जिन्होंने लोकसभा के महासचिव के रूप में काम किया। वे भारत के अग्रणी संवैधानिक विद्वानों में से, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स में से एक थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक समझौते पर पहुंच जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारी आपस में अच्छी बनती है, खूब छनती है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: Welcome, friends, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove to the beat. दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा? सांबा? रॉम्बा सांबा? टेकिला? टैंगो? चार्ल्सटन? पोल्का? नो? तो फिर क्या हो? वन टू वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर

0: स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ब्रिटिश घड़ियों में सुबह के 11:04 हुए हैं और बहनों भाइयों, मनोरंजन में ये समय चिंतन के लिए निश्चित है। दूर दूर बैठे हमारे श्रोता जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, भी उनका स्वागत है। विशेषकर आज के चिंतन में जो हम आलेख शामिल कर रहे हैं, ये हमें भिजवाया है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर भीम साहब ने। भीम जी लिखते हैं कि रवि जी, हम तो आपसे काफ़ी आगे हैं समय के हिसाब से, लेकिन आपके यहाँ भी आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा होगा, लोगों को याद दिलाइए और जागरूक बनाइए। थैंक यू प्रोफेसर भीम जी। प्रोफेसर भीम प्रकृति के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हैं और कहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज टू रिमाइंड पीपल कि हमारे कुछ कर्तव्य, हमारे कुछ फर्ज बनते हैं इस नेचर के प्रति, धरती के प्रति, जल, आकाश, वायु, इनके प्रति। तो साहब, एक छोटे से प्रसंग से उन्होंने इशारा किया है। एक बुजुर्ग आदमी, बहुत बूढ़ा, अपने घर के आंगन में एक प्लांट लगा रहा था, एक दरख्त का छोटा सा पौधा आरोपित कर रहा था। तभी वहां खेलते बच्चों ने उन्हें देखा और उनका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, बाबा जब तक ये पौधा पेड़ बनेगा, इस पर फूल लगेंगे, फल लगेंगे, उन फलों को खाने के लिए आप तो दुनिया में नहीं रहेंगे, पक्की बात है। बूढ़ा मुस्कुराया, बोला, हमने अपनी जिंदगी में जो फल खाए हैं बेटा, वो दरख्त के हमने लगाए थे, हमारे बुजुर्गों ने लगाए थे। मैं आने वाली पीढ़ी के लिए, आप जैसे नौजवानों के लिए और आगे बच्चों के लिए ये दरख्त लगा रहा हूं, अपने लिए नहीं। बहन भाइयों, हमें दुनिया में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, जो फल फ्रूट सब्जियां, मिनरल्स, वनस्पतियां, अनाज, भाई जो कुछ भी मिल रहा है, डायरेक्टली हम तो नहीं उगाते और कुछ तो बहुत पहले के लगाए हुए हैं, हम उपभोग कर रहे हैं, तो हमें भी आने वाले समय के लिए कुछ करना चाहिए। प्रोफेसर भीम कहते हैं कि आज 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो आपको बता दें कि अजरबैजान के नगर शहर बाकू में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, दुनिया भर के देश में इकट्ठे हो रहे हैं इस बात पर विचार करने के लिए कि ये जो रोज रोज प्रकृति का प्रकोप हम सहते हैं, इससे कैसे निपटा जाए। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1972 में किए गए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य, इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के प्रति अवेकनिंग बढ़ाना, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव जगाना। भाई मदर नेचर चाहती है कि हम उसका सम्मान करें, उसके साथ खिलवाड़ ना करें, छेड़छाड़ ना करें। सुन लीजिए, धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है, और इस धरती के प्रति कर्तव्य याद दिलाने के लिए आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्रोफेसर भीम कहते हैं कि प्रकृति या ये धरती हमसे शिकायत नहीं करती, हमसे आर्ग्यू नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, लेकिन कभी कभी इशारा जरूर करती है। ये जो भारी भरकम गर्मी पड़ती है, या कभी कभी जो भूकंप आते हैं, या कभी जो समंदर में उफान उठते हैं, ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि कुछ गलत हो रहा है प्रकृति के साथ। हमें प्रकृति को सम्मान देना है भाई। ये जो ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट चेंज, ये सब चेतावनी तो हैं। इनका इशारा समझ करके हमें पानी की रक्षा करनी है, पेड़ लगाने हैं। ये हरियाली जो ख़त्म होती जा रही है, जो सीमेंट के शहर खड़े होते जा रहे हैं, याद रखिए धरती कह रही है छुटपुट दुर्घटनाओं के माध्यम से कि हरी भरी ये धरा हमारी। नोट कर लीजिए, जीवन की है ये फुलवारी। नदियां, पर्वत, वन और उपवन, इनसे ही है जग का जीवन। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, मिलकर धरती को स्वर्ग बनाएं। स्वच्छ रहे पर्यावरण सारा, यही रहे संकल्प हमारा। नेचर का सम्मान करेंगे, हरियाली का मान करेंगे। आने वाली पीढ़ी बोले, धन्य है वे जो वृक्षों को तोले।
1: वो कौन है जो माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए, दे दे के लहू अपना।
0: धरती माँ, प्रकृति माँ, इज्जत करें इसकी।

0: समझ में आ गया भाइयों, हम क्यों धरती को धरती माँ कहते हैं। माँ की तरह नाज उठाए, पलकों पे बिठाए। क्यों नदियों को माँ कहते हैं, प्रकृति को माँ कहते हैं। यही धरती भाई, आज विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर छोटी सी ये भेंट हमें आलेख भिजवाया सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर भीम देव जी ने। प्रोफेसर भीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज के चिंतन के लिए लोगों को जागरूक बनाना हमारा कर्तव्य बनता है रेडियो के माध्यम से, और भाई संचार माध्यमों के जरिए किसी भी तरह से इतनी जागरूकता कि हम प्रकृति के प्रति अपने सम्मान का भाव रखें। जो गीत हमने सुनवाया दैट वाज बाय महेंद्र कपूर एंड साथी, संगीतकार नौशाद साहब की रचना थी, फिल्म गंवार से लिया गया था ये गीत। और आज का चिंतन, आज का विचार, एक बार पुनर्धन्यवाद प्रोफेसर भीमदेव इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। चिंतन समेटते हुए याद दिला दें कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाने हैं भारत तो अवसर है, समय है और अच्छा रेट भी है। आज का रेट, फॉर वन पाउंड इन योर पॉकेट कुड गेट यू अप टू 127.5 इंडियन रुपीस, 127.50 रुपए। और इसके अलावा सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, देन Another extra benefit, bhai. You could be into win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. TNC apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Yeah, like a

महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सलमा और साथियों की आवाजों में भाई ये कव्वाली नुमा गीत हमने आपको सुनवाया, संगीतबद्ध किया था संगीतकार रवि ने और भाई पसंद किया हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, उनमें एक हमारे एजाज भाई शामिल हैं, चशम में सुन रहे हैं, एक एक गीत पर उनका रिएक्शन आता है। थैंक यू वेरी मच एजाज भाई, कीप लिसनिंग। अनिल सोनी वियाना में सुन रहे हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी कव्वाली है, मैंने आज देर से सुनना शुरू किया। क्यों भाई अनिल जी, ये ठीक नहीं है, आप लेट आए हैं, मैं तो कहता हूँ कि बेंच पे खड़े हो जाओ। थैंक यू वेरी मच, देर आए दुरुस्त आए, सुनते रहिएगा कव्वाली आपके नाम की, क्योंकि आप कव्वालियों के बड़े रसिक हैं। और इसके अलावा भाई ललित छत्रिशा, आपका संदेश मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। पम्मी स्लो में खबरों के रसिक देखिए, और नीलम हमारे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू नीलम जी। महेंद्र बजारिया हैरो में, और अर्जन जी थैंक यू। भरत गंगाराम भाई, साइकिलिंग करते हुए आपकी तस्वीर बड़ी अच्छी लग रही है। सत्यनारायण सैनी हमें भारत में सुन रहे हैं, धन्यवाद उनका। राजीव पटेल कहते हैं द चिंतन वाज एनवायरमेंटल, भाई आज पर्यावरण की प्रति जानकारी बढ़ाने की खातिर आपने चिंतन सुनाया। आपको पता है हमारा मिल्टन कीन्स कितना हरा भरा है, बहुत खूबसूरत है साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएँ। निर्मला जी आपका संदेश मिला है, थैंक यू, चिंतन अच्छा लगा आपको। और आप कौन हैं, अरे आप तो वही हैं कंचन अग्निहोत्री, थैंक यू कंचन जी। महेंद्र पटेल क्रोइडन में सुन रहे हैं, फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन में सुन रहे हैं, और हिना जी आप कहाँ सुन रही हैं, थैंक यू जहाँ भी सुन रही हैं। प्रतिभा जी कहती हैं कि आज मेरा छोटा भाई ना दिल्ली में वृक्षारोपण कर रहा है, वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगा रहा है, भाई बधाई दीजिएगा हमारी ओर से, शुभकामनाएं उन्हें। देशराज बेसन साहब कह रहे हैं कि आपके लिए कविता भेज रहा हूं, कांपते हाथों से रिश्तों को वक्त को थामा ना गया, जिंदगी का हर दौर नजरों के सामने से गुजर गया, किससे कहूं सुनेगा कौन मेरी लड़खड़ाती जुबान की बात, सब सोचते हैं ये बूढ़ा फुसफुसा कर न जाने क्या कह गया, झुक गए जब कांधे जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते, सहारा मांगा मैंने तो कोई मेरे हाथों में लाठी थमा गया, मेरे घर आंगन की फुलवारियां सभी सूखी और उजाड़ हो गईं, सभी सूखी और उजाड़ हो गई, तितली कोयल के बेघर होने का इल्जाम भी मेरे सर गया, वाह। बड़े शोक से तामीर किया था मैंने अपने सपनों का महल, अरसा हुआ घर के इस कोने को छोड़ कहीं आया ना गया, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद बैसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द पोएट्री। जैस्मीन शुक्रिया, मानसी धन्यवाद। और आप कौन है साहब, नाम लिखा करें प्लीज़, ढूंढ लिया, किरण है आपका नाम, थैंक यू वेरी मच किरण जी, सो नाइस ऑफ यू। जगदीश जी बुशी में, उल्लास टोरंटो में हमारा साथ निभा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हेतल सोलंकी आपका भी धन्यवाद, और आप निक कुमार जी थैंक यू वेरी मच, है ना, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए, सुनने के लिए और ये बताने के लिए कि हम सुन रहे हैं।

0: This is Like a Gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, और जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, और ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, बस इन्हीं में जीना है, इन्हीं में मरना है।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Leica Extra podcast update.
3: और बता दें आपको भाई लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड आ गया है पॉडकास्ट का, एपिसोड 19, लिव इन रिलेशनशिप्स चर्चित हैं भाई और रेडियो वाली ने होस्ट किया है। बहुत सारे सवाल उठे हैं और जानने की कोशिश की गई है कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी एशियन कम्युनिटी में कैसे देखी जाती है। ये भाई साथ साथ रहे शादी से पहले ये एक ट्रायल पीरियड समझा जाता है और क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग मापदंड स्थापित किए गए हैं। भाई महिला अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो कुछ और सोचते हैं लोग, और पुरुष अगर रहते हैं तो, लड़का अगर रहता है तो चलता है आजकल क्या सोचती हैं आप। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, देखना मत भूलिएगा।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है लाइका गोल्ड
3: ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट ट्रेवल world.com।
5: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LAIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LAIKA Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Hi, hello, public demand. पत्नी प्रीमियर लीग એટલે કે PPL, yes, from 3rd July till 12th of July. Wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo,
11: पत्नी प्रीमियर लीग shows at Risley, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 0794756194.
12: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
13: Aa September Paris ma itihas lakhai rahyo che.
14: BAPS mandir no opening ane Star Tours tamne lai jai rahyo che aa pavitra yatra par.
13: Europe na 3 thi 9 divas na tours.
14: France, Switzerland, ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
14: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટુર સાથે
13: કોલ 020-8900-2323 ધ સ્ટાર ટુર
14: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
15: લંડન ગુડ ન્યૂઝ આપકા ફેવરિટ આઈટેક અબ TRS કેશ એન્ડ કેરી સાઉથ હોલ મે હ્યુજ વેરાયટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ વિથ બેટર પ્રાઇસીસ પરફેક્ટ ફોર રિટેલર્સ ટ્રેડર્સ ટેકઅવેઝ એન્ડ કેટરર્સ આઈટેક ઇઝ ઓપન 24/7 વિથ ફ્રી પાર્કિંગ ફોર આઈટેક એટ યુનિટ 123 સાઉથ બ્રિજ વે સાઉથ હોલ UB24AX Once you visit, you come again and again.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime. On Leica Gold.
3: वेरी गुड मॉर्निंग लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन और भाई क्रिकेट में अगर आपकी दिलचस्पी है तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है लॉर्ड्स में आज खेल का दूसरा दिन है बड़ा लो स्कोरिंग मैच चल रहा है भाई पहली इनिंग में इंग्लैंड की टीम 140 रन पर सिमट गई लेकिन न्यूजीलैंड भी जवाब देने में बहुत पीछे रह गए भाई 108 रन बनाए हैं और 9 विकेट चटकाए हैं इंग्लैंड वालों ने उनके गजब है

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से स्कोर एक बार फिर बता दो भाई आपको कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये पहला टेस्ट मैच कल शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड को बैटिंग करने का न्योता दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 140 रन पर सिमट गई पहली इनिंग में। जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम भी कुछ खास नहीं कर पाई। इस समय उनका स्कोर है 108 रन और 9 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। स्कोर से हम जोड़े रखेंगे आपको, आप जुड़े रहिएगा रायका रेडियो नेटवर्क के साथ। क्रिकेट में दिलचस्पी रखने वालों को ये भी बता दें भाई, विमेन वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं और हम उससे भी आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौता टेस्ट मैच भी तो शुरू हो रहा है।

0: Wrestling. Visit startours.co.uk.
1: Backstage Siblings, first ever UK performance, happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
2: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
4: और बहनों भाइयों, इस सप्ताह के कलाकार का नाम है श्यामलाल बाबू राय. भाई कोई नहीं पहचानता इस नाम से, पर असल नाम यही था. गीतकार इंदिवर हैं इस सप्ताह के आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ऑफ द वीक, जिनकी कलम ने ऐसे ऐसे गीत लिखे भाई, ऐसे ऐसे गीत जो हैं फिल्मी दुनिया को दिए कि आज भी लोग गुनगुनाते हैं और इंदिवर साहब उन गीतों के साथ याद आते हैं.
3: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: इंदिवर की कलम से जन्मा ये गीत उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाजों में.

गीत, गजल, शब्द, भजन, कव्वाली भी अच्छी लगती है। गीत, गजल, शब्द, भजन, कव्वाली भी अच्छी लगती है। सुर में जब कोई देता है तो गाली भी अच्छी लगती है।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई ये भी आपको याद दिलाता चलूं कि आतिफ असलम रिटर्न्स टू द यूके फॉर अ स्पेशल वन ऑफ कॉन्सर्ट एट द O2 लंदन ऑन संडे द 14th ऑफ जून. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम AXS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ऑफ कोर्स. और भाई रागासन नाम तो सुना होगा, बड़ा प्रतिष्ठित नाम है. लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स at laikaradio.com.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
4: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
5: Good night.
6: Achha, good night.
2: अभी रात हुई नहीं है. कैसे नहीं हुई है? ऑस्ट्रेलिया में रात चल रही है.

0: जगाओ इनको भाई, अभी प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के बीच में नहीं सोना। साउथ ओल्ड ट्रेवल का संदेश सुन लीजिए, नींद उड़ जाएगी क्योंकि भाई इतनी अच्छी ऑफर वो दे रहे हैं। मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ ओल्ड ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट साउथ ओल्ड ट्रेवल और कॉल 0208-574-8410।
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: लाइका गोल्ड
0: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Visit travelhubworld.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Aji aisa mauka phir kahan milega?
7: Maharaja Tours la rahe hain Captivating China 2026. Shanghai, Beijing, Xi'an aur Chengdu ka unforgettable safar. Great Wall, Terracotta Warriors, high-speed trains aur adorable pandas. Flights, hotels, Indian khana aur guided tours, sab included. From £3,299 per person, visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
8: राम कृष्ण हरी। UK तयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4-5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकेट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
1: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
9: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
11: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
10: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
13: 4 beers, please, garçon!
12: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
7: be part of a historic grand opening.
9: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
7: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
9: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
7: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Like a Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@likeamedia.co.uk.
7: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
0: इफ्तदाई आशिकी का है फसाना मुख्तसर, टूट कर इस दिल का उस चेहरे पे आना मुख्तसर। अपने घर से उस गली तक गाहे रास्ता याद है, अपने घर से उस गली तक गाहे रास्ता याद है। हाय कितना हो गया है ये जमाना मुख्तसर, एक एक कदम पर एक एक पैड़ याद है।

0: बस इतना ही याद है, इससे आगे कुछ याद नहीं है।
1: इतना तो याद है मुझे।
0: और मुझे याद है भाई, ये फिल्म मैंने हिसार में देखी थी, हरियाणा के शहर हिसार में है, महबूब की मेहंदी। हिसार में हमारे शो चलते थे, एक था टीटीसी ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ हमारे प्रोग्राम्स होते थे। और भाई शो में बिजी रहने के बाद थोड़ी बहुत जो फुर्सत मिलती थी उसमें फिर कोई फिल्म देखते थे। महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत आपने सुना।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी जरूर होगी भाई। कल टॉस जीत करके न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड वालों को न्योता दिया बैटिंग के लिए, और सारी टीम को 140 रन पर समेट दिया, निपटा दिया। लेकिन हमें लगता था बड़ा लो स्कोरिंग मैच इनिंग रही है इंग्लैंड की, पर न्यूजीलैंड की उससे भी ख़राब, सारी की सारी टीम जो है इनकी भी निपट गई। और इस समय इंग्लैंड खेल रहा है 24 रन विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 51 रन की लीड उनको हासिल है। न्यूजीलैंड की टीम जो है भाई ये समझ लीजिए पिछड़ी हुई है 51 रन से दूसरी इनिंग में। तो जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा स्कोर से तो हम आपको जोड़े रखेंगे। पर कमाल है कि इस मैच में बहुत आगे नहीं बढ़ पाई हैं दोनों टीमें, बहुत लो स्कोरिंग। टेस्ट मैच है ये, कोई T20 या वनडे इंटरनेशनल नहीं है, पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस, रिजल्ट जरूर निकलेगा इसका।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और रेट्स में बता देता हूँ भाई, लेम्फाई की एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.05 रुपीज़, पाकिस्तानी 375.01, श्रीलंकन 453.05 रुपीज़ एंड बांग्लादेशी टकाज 165.38।
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: और सर्राफा बाजार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर लेट मी टेल यू द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 106.61 पाउंड्स पर ग्राम।
4: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स, PoojaSweets.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823।
9: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
10: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
11: Atif Aslam live in the UK.
10: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
11: Book your tickets now at AXS.
10: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
15: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
16: London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Kerry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: और मनोरंजन को समेटने का समय हो गया है बहन भाइयों, वीकेंड सामने है और हमारे प्यारे प्यारे श्रोता कहते हैं पहाड़ जैसा वीकेंड लगता है। करिए इसे भाई क्या कहते हैं, ब्रीफ कर लीजिएगा। छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं होते, कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास हैं, उनके नाम नहीं होते। यूं मेरे मुस्कुराने की वजह तुम ही बने रहना, जिंदगी में ना सही पर जिंदगी बने रहना, याद करना और याद आना, कहीं भूल ना जाना। हैव ए सुपर्ब वीकेंड। बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा।

0: That's Lahu Ke Do Rang, 1979 की फिल्म. इन्होंने जो फिल्में साथ में की थी महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने, फिल्म जुर्म 1990 की, वाओ विनोद खन्ना इन देयर, यू नो आशिकी 1990, सारे हिट हिट यू नो सॉन्ग्स. राहुल रॉय अ न्यू एंट्री, अनु अग्रवाल अ न्यू एंट्री, डायरेक्टेड बाय none other than Mahesh Bhatt. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट मुकेश भट्ट. मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में साथ में की अनटिल विशेष फिल्म्स जो मुकेश भट्ट जी ने टेक ओवर कर ली. विशेष फिल्म्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मुकेश भट्ट का बेटा जो है, आउट ऑफ द थ्री चिल्ड्रन वन इज विशेष, एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट विशेष फिल्म्स. एंड देयर वाज अ लिटिल बट ऑफ You can say difference of opinion between the brothers, and he took over from May 2021. Lekin May 2021 tak jo filmein bani, Dil Hai Ke Manta Nahi, Sadak, and then there were other films like Sir, Nasiruddin Shah, Najayz, Criminal, Fareb, Ghulam. ये सब फिल्में इन्होंने इतनी अच्छी फिल्में दी. फिल्म राज जो पहली फिल्म थी राज, उसमें मैंने गाना गाया था ये शहर है अमन का विद जॉली मुखर्जी. जी हाँ, राज 2002 की. एंड दैट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस बिकॉज दैट्स व्हेन मेरी दोस्ती हुई मुकेश भट्ट जी के साथ. विशिंग हिम अ हैप्पी 74th बर्थडे. आगे जाते हुए थर्ड आवर में मेरे दोस्त और एक मशहूर प्रोड्यूसर, इट्स मार्क्विस जेवियर्स, इनका बर्थडे है आज. आज सुबह सुबह मैंने उनको विश किया. And they are enjoying in Goa and Mumbai. The family is one of the places. He's got a resort in Goa. So they might be celebrating over there. So वो भी हम third hour में बात करेंगे. जो उन्होंने उनकी फिल्मों के लिए मुझे गवाया था वो मैं आपको सुनाऊंगा. And what else is there? Yes, at 1:30 today, I am going to get Jay Kotak. Yes, the mastermind of this beautiful, beautiful play that is coming. Sakhna Rejo, husband ji. Yes, that's right. 1:30 baje hum baat karenge unke saath. To aage badhte hain. Main hoon Bali Brahmbhatt.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: That's well, your £1 in British sterling can get you up to 127.5 127.5 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
4: Lights on, shutters up, staff ready.
3: But today's customers don't start on the high street.
4: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
3: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
4: They walk into your competitors.
3: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलैंड स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री. सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलैंड स्टैनमोर HA7 4LF. फॉर मोर डिटेल्स सोमयज्ञ.com कॉल 0793268 6263852.
2: Location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
6: In Dubai.
3: London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show, KMB with Shanila, brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers. Showcase live on the runway featuring special guests, actress Kubra Khan and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group. 12th June at the Willows from 1 p.m. till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989-972-879.
7: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord.

0: फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold. This is Leica Gold across Greater London.
2: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस। विजिट startours.co.uk.

0: across London. This is Bally Brambat on Like a Gold.
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा।

अरे वाह वाह वाह वाह वाह. एंड आई एम प्लेइंग दीज पर्टिकुलर सॉन्ग्स बिकॉज इट कमेमोरेट्स 5th of June 2026 मार्क्स एग्जैक्टली 153 years सिंस अवर ancestors लेफ्ट इंडिया एंड दे embarked ऑन अ जर्नी टू कंट्रीज लाइक सूरीनाम. And let me try to remember other countries. I think when I went to South Africa, there was the UP-Bihar connection of people who had settled there and taken, you can say, they mingled with the local people in the country, but then they retained some of the musical values and some of the cultural values. And Suriname, then the migration from Bihar to West Indies was Trinidad and Tobago. There was Fiji, South Africa. And they turned the music, UP wala jo thumka hai, wo music ko retain karte hue, wo beat jo hai, usko inhone westernize kar di, lekin traditional instruments like jo apna dholak hai, usko retain kiya us music ke saath. And they formed a music called Chutney Music. आपको मालूम है कि उनकी वाइफ मैं भूल गया यार, उन्होंने एक अच्छा गाना बनाया था चटनी म्यूजिक का, कंचन. दैट्स राइट, बाबला एंड कंचन, इन्होंने एक अच्छा गाना बनाया था. फुलौरी बिना चट

0: प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर। इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, इवेंटिम अपोलो, हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald Packaging.
3: Be part of a historic grand opening.
4: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
3: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
4: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
3: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
6: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
5: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
7: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
0: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
8: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: And this is a beautiful song by Kishorda and Asha Bhosle, Yaadon Ki Barat. Yaadon Ki Barat, जब बात की आवाज आती है तो रजनी पंचाल, मेरा पुराना दोस्त, और जयदेव सोनी दोनों मजा कर रहे हैं लेस्टर में, खाना खा रहे हैं, लंच ले रहे हैं. यादों की बारात. लव यू ब्रदर्स.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

आज के विनर ऑफ क्रेजी फॉर किशोर कॉम्पिटिशन हैपन्स टू बी विजय गुनोवा. विजय गुनोवा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड गो एंड एंजॉय द शो. एंड इफ यू वॉन्ट टू बाई टिकट्स वेन यू टेक योर लव्ड वंस, ऑफ कोर्स यू एंड वन अदर पर्सन विल गो टू द शो, बट इफ यू वॉन्ट टू टेक रेस्ट ऑफ द फैमिली, यू नो वेयर टू गेट द टिकट्स फ्रॉम, और जस्ट आस्क मी, आई विल लेट यू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सॉन्ग.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Gold Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: They are indeed, and they're offering you wonderful beach holidays, city escapes and more with holiday deals that include flights, hotels and atoll protection. They've been trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Call or visit Southall Travel on 0208 574 8410.
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Gold Drive with Sandy Shah.
3: Oh, yeah.
1: This is Sandy Shah on Gold Drive.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823.
9: London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show, KMB with Shanila, brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers, showcased live on the runway, featuring special guest actress Kubra Khan, and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group, 12th June at the Willows from 1 p.m. till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989972879.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: बोले तुझे क्या कर रहा है रे?
12: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
11: ये तो बताओ, कोई पता चला?
12: गुरु गुरु,
13: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
11: तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र. क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
14: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
15: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
16: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
15: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
17: 9 days टू गो. Countdown is on. Just 9 days until Atif Aslam performs live at the O2 on the 14th of June. Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
18: SonaTours.co.uk. 13 days Vietnam and Cambodia. Departures every month, September to December. First 10 bookings get 100 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
3: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
19: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Laika Gold. Make it a date.

0: Sandy Shah. Oh, yeah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: So make it special with Southall Travel. Explore beach breaks, city escapes and much more. Holiday deals with that include flights, hotels and atoll protection. They've been trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Call Southall Travel on 0208 574 8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड
4: ट्रेवल हब वर्ल्ड .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड .com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: Visit travelhubworld.com
5: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहा छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्य नी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280 5 सखना रे जो हस्बैंड जी
6: कृष्ण हरी यूके तैयार आहत ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जूनला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्की आवडेल थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव टिकिट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
0: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
7: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
0: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
0: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda, that fits your life.
10: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
11: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
12: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
11: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
13: Sonatours.co.uk this September witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208-951-0111.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: Gold Drive with Sandy Shah.
14: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें. Like our radio sales on 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk.
15: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The M4 is heavy this evening onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A312 Church Road and Mandeville Road still slowing from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to North Holt Station. A406 North Circular Road, heavy both ways at the Hanger Lane gyratory. A40 Western Avenue, heavy westbound before you get to Gypsy Corner. There's congestion on the A316 Chertsey Road westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout. And the A205 South Circular has eased from Red Rover to Chalkers Corner. Finally to the Tube and minor delays on the Central Line due to cancellations. That's your latest traffic and travel.
2: Yeh hai Like a Gold, 10:35 AM.
3: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
4: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. India versus Pakistan live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments, बिल्कुल unmissable. अपने tickets अभी book करें at englandhockey.co.uk.
3: Joyful the scoring, he does.
4: India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
3: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Harrow. Come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk. Saturday, 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LIKA Radio.
8: क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
10: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
8: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
15: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
16: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
17: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
16: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
17: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 Power line.
19: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
20: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड, द लाइट District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
21: Next, Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Like a Gold.
22: हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।
23: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: क्या बात है भी, क्या बात है। आप लोगों के साथ में मुझे भी बड़ा मजा आ गया। एंड आप सबका तो मुझे गारंटी है पूरा कि आप सबने दोनों ही मैंने गीत ऐसे लगाए थे कि आपने डांस करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे डांस कर रही थी। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, दिस इज फैंटास्टिक फ्राइडे एंड इवनिंग शो विद अश्विनी। आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। पहला गीत हमने लिया कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, मेरा पिया घर आया। अब जिनके जिनके पिया घर पे आए होंगे उन सभी ने उनके लिए ये गाने गाए होंगे याराना फिल्म से। दूसरा था प्यार दो प्यार लो, अरे ये तो मेरी टैगलाइन है, देखो इन्होंने ले ली। हर शाम जब मैं शो को टटा बबाई करती हूँ, शो को नहीं आप सबको टटा बबाई करती हूँ, एंड जब शटर डाउन होता है शो का तब तो ये लाइन हम बोलते हैं भाई, प्यार दो प्यार लो। सपना मुखर्जी की आवाज़ में जाबाज फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। ओके, तो रजिस्टर खुल चुका है, अटेंडेंस दर्ज कीजिए और आज ये जो म्यूज़िकल नाइट है इसमें डांस मस्ती के लिए तैयार हो जाइए। जिन्हें कोई तकलीफ़ है डांस करने में आज प्लीज़ डांस ना करें, आराम से एंजॉय करें। और ये ऐसे कैसे होगा कि अश्विनी आई है और असाइनमेंट नहीं देगी, रैंडम सा क्वेश्चन बड़ा ही रैंडम क्वेश्चन। ओके, हम सब की आदत होती है, हम एशियन लोग स्पेशली, हम लोगों को ना कोई भी चीज़ ना राइमिंग स्टाइल में बोलने की आदत होती है। तो आज आपके फेवरेट राइमिंग वर्ड मैंने सुनने हैं। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना हम चाय शाय रोटी शोटी है ना, गाने वाने, आज आपका टास्क ये है, ऐसे कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं जो आप लोग सुनते हैं रेगुलरली या आप लोग खुद रेगुलरली बोलते हैं, है ना, बड़ा ही राइमिंग बड़ी रैंडम सी मैं आपके लिए आज ये असाइनमेंट लेके आई हूँ। डांस मस्ती फुल ऑन चलने वाला है, जैसे मैंने कहा था कि प्लीज़ फ्राइडे ना आप मेरी बातों को ऐसे मतलब हल्के में ना लिया करो, बड़ी सीरियसली मैं बात करती हूँ, मैं मस्ती मज़ा करती हूँ आप सबके साथ में, लेकिन कैलोरीज बर्न करनी है। नेक्स्ट ट्रैक तैयार हो जाओ, कारवा फिल्म से लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में चलती जवानी मेरी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1, you'll get 127.1 Indian rupee. And send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026, live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti, aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026, feel the beat, live the legacy.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
7: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन.
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स,
7: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल.
7: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट.
6: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 07300998823.
7: Book your table today.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
9: Atif Aslam live in the UK.
8: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
9: Book your tickets now at AXS.
8: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
11: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
10: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
11: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
10: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
11: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
10: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
11: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
15: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स नियरली 32 मिनट्स पास्ट 7, 7:32। आ है, मैंने बताया था मुझे 35 के अंदर गिनती आती है। इट्स 5th of June फ्राइडे। आज किसी का बर्थडे तो हैप्पी वाला बर्थडे जी, आज किसी की एनिवर्सरी तो हैप्पी वाली एनिवर्सरी, और आज नई नौकरी मिली तो कंग्रेचुलेशंस, पुरानी गई है तो कुछ अच्छा आ रहा है, ठीक है। सो खुश रहिए, एक तो फैंटास्टिक फ्राइडे है, इवनिंग शो विद अश्विनी है, नाचने गाने के लिए फुल ऑन रेडी। आप लोगों के मैसेजेस एंड आई कैन एक्चुअली सी कितने खुश हो यार सच में, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब आप लोग इतने खुशी खुशी मुझे जब मैसेजेस भेजते हो कि अश्विनी टीचर आ गई अटेंडेंस लगा लो। ओके, राइमिंग वर्ड्स के बारे में आज बात हो रही है कि चाय शाय रोटी छोटी म्यूजिक व्यूजिक गाना वाना, ऐसे आपके यहाँ पे कौन से शब्दों का आप यूज़ करते हैं, होता है हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसे यूज़ करते हैं या हमें खुद को ऐसी आदत होती है, या ये भी एक चीज़ हमने देखी है, चलो ये नहीं तो हमें ना रिपीटेशन करने की काफ़ी आदत है। हाँ हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बाबा क्या बाबा क्या बाबा क्या बात है ना। जो भी ऐसे ध्यान में आ रहे हैं, फ्राइडे है ना तो आज कोई गहन डिस्कशन वाले सवाल यहाँ पे नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट ट्रैक यादों की बरात में, भाई बिच्छू यहाँ पे अभी चढ़ गयो पापी बिच्छुआ।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ, मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: शोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम अच्छा? चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम।

0: work out.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 8:30. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। द इवनिंग शो विद अश्विनी मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक। 3 hours, 3 amazing features. फर्स्ट आवर में यादों की बारात आपको सुनाया, अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इमोशन ऑफ द डे। फैंटास्टिक फ्राइडे, अभी से हमने फैंटास्टिक एक तो इस वजह से कर दिया कि वीकेंड शुरू हो चुका है, हम जो काम करते हैं उसका लोड भी कम हो जाता है क्योंकि मेंटली हम लोग सब एक्साइटेड रहते हैं कि दो दिन छुट्टी, मतलब फ्राइडे आफ्टरनून ऑनवर्ड्स ही हम लोग अपने अपने छुट्टी के जोन में चले जाते हैं। एंड यहाँ पे फैंटास्टिक फ्राइडे जो आपके लिए मैं लेके आती हूँ, इंटेंशन ये होता है कि पूरा सप्ताह निकल गया, न जाने कितनी अच्छी चीज़ें हुई, न जाने कितने चैलेंजेस आए, तो जब वीकेंड शुरू हो रहा है रिलैक्स हो जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, एंड वी ऑल हैव टू फेस दैट। एंड इट्स ओके इफ यू फील लाइक क्राइंग वंस अ वाइल, इफ यू फील सैड वंस अ वाइल, इट्स ओके, वी आर ह्यूमंस, है ना। अपने उस इमोशन के साथ में रहिए, लेकिन बहुत लंबा मत रहिए, क्योंकि जब अश्विनी यहाँ पे आ जाएगी, रैंडम सा कोई सवाल पूछेगी और आप उसके जवाब दोगे, यानी कि तारीफ वारीफ होने वाली है। अरे वाह, तारीफ वारीफ, हाँ, फर्स्ट आवर का सवाल बिस्तर बिस्तर। आप लोगों के अभी भी मुझे आंसर्स आ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा था कि राइमिंग वर्ड्स मुझे ज़रा बताइए। नेक्स्ट ट्रैक जो है वो आपको हम सुना रहे हैं, दैट इज आशा भोसले एंड दिलराज कौर की आवाज़ में, सत्ते पे सत्ता। बड़ी मस्ती भरी फिल्म थी ना, उस फिल्म को देख के बड़ा मज़ा आता था, बट वो उसमें जो 7 भाई दिखाए हैं और वो जैसे घर में रहते हैं और वो वहाँ पे घोड़ों का स्टेबल वगैरह भी ऐसे कुछ दिखाया था ना, ऐसे कुछ तो रहता है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, बट ठीक है चलो।
1: लाइका गोल्ड, इमोशन ऑफ द डे।

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
0: अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: एक बार घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ, इट्स 42 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अरे मतलब मैं मुझे ना कभी कभी आश्चर्य लगता है संगीत का कितना प्रभाव होता है। एक तो आई लव माय हिंदी, या द इफेक्ट म्यूजिक हैज़ ऑन अस इट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब इस स्टूडियो में यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन अकेले इतना झूम के मैं डांस करती हूँ गानों पे, एंड देन उसकी क्लिप्स जो है मैं पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, जो आप हमारे लाइका गोल्ड, जो हमारा लाइका गोल्ड रेडियो का इंस्टाग्राम है वहाँ देख सकते हैं, फिर लाइका रेडियो मैनचेस्टर की जो हमारी इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है वहाँ देख सकते हैं, एंड साथ में मेरा अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज़ रेडियो वाली अश्विनी, वहाँ पर आप मेरे पर्सनल अपडेट्स भी देखते रहते हैं। तो जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि कल मैं होस्टिंग कर रही हूँ, एंकरिंग कर रही हूँ वाद्य महोत्सव, जहाँ पे 100 ढोल 80 ताशा होने वाले। दिस इज़ फॉर श्री विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल से रिलेटेड ये जो एक इवेंट हो रहा है, यहाँ पे 3000 प्लस पब्लिक आने वाली है। बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है, महाराष्ट्र का कल्चर, महाराष्ट्र का फूड, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। सोचिए 100 ढोल जब साथ में बजेंगे, वाओ, पूरा विंडसर जो है झूमने वाला है। एंड अब बात करते हैं उन लोगों की जो सोते हैं किसी एक करवट पे। सो लेफ्ट साइडेड स्लीपर्स, जो लेफ्ट साइड में एक साइड में होके सोते हैं, दैट इज लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड स्लीपर्स रिपोर्ट सिग्निफिकेंटली मोर नाइटमेयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 40-41% कंपेयर्ड टू राइट साइडेड स्लीपर, अप्रॉक्सीमेटली 14-15%। सो अब समझ में आ गया कि आपको नाइटमेयर्स क्यों आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में जब आप सो रहे हैं तो आपके नाइटमेयर्स का परसेंटेज बढ़ रहा है, परसेंटेज कम होगा अगर आप राइट साइड में सोएंगे। देखो भैया, हम हैं म्यूज़िकल फैमिली है ना, तो फैमिली वालों की तो हम फिक्र तो करते हैं ना। तो आज ज़रा ध्यान से देखिएगा जब आप सोनेंगे, ऐसे नहीं गए और गुड़ अपना है ना, मतलब रजाई वजाई लेके। याद रखना अश्विनी ने आपको क्या बताया था। एपिसोड नंबर 19 आ चुका है लिव इन रिलेशनशिप, जिसे होस्ट किया है हमारी अपनी रेडियो वाली ने, और उन्होंने सवाल पूछे हैं, आर लिव इन रिलेशनशिप स्टिल अ टैबू इन आर कल्चर यहाँ पे, एंड देन आर लिव इन रिलेशनशिप्स जज्ड डिफरेंटली फॉर मेन एंड वुमेन इन साउथ एशियन कम्युनिटी। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना।
5: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
6: यू नो आई फैन शाउट एट फुटबॉल मैचेस।
7: ओह वेक अप,
6: दैट्स बिकॉज़ साउंड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टेल द प्लेयर्स दे आर रबिश। Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocenter.org.
8: Come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare SKSST.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners, Lika Radio.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
9: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 127.17 Indian rupee, 371.29 Pakistani rupee, 448.38 Sri Lankan rupee, 163.73 Bangladeshi taka, 83.66 Afghani.
8: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
8: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.70 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। वीकेंड का सबका अपना प्लान सेट होता है ना, फ्राइडे इवनिंग्स जो हैं हम लोग कोई मूवी लगा के बैठते हैं, या फिर सैटरडे कोई ना कोई घर के ट्रेडिशनल खाने पीने की डिशेस बनती है, ट्रेडिशनल घर के काम होते हैं। अब जब समर्स आते हैं तो वैसे घर की बेडशीट्स धो के फिर हम लोग बिल्कुल बाहर गार्डन में सुखाते रहते हैं। एंड समर्स में लोग थोड़ा ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी हम लोगों से सहन नहीं होती। अब देखो ना टेम्परेचर कैसे चेंज हो गया, हमने सोचा कि जैकेट उठा के रखें, फिर से जैकेट निकालने पड़े, टेम्परेचर्स 10, 11 ऐसे डिग्रीज हो रहे हैं। ठंडी हवा होती है, अच्छी लगती है, जो है हल्की फुल्की ब्रीज होती है, वैसे ही हल्की फुल्की ब्रीज जो है खुशी की ब्रीज होती है। ये हल्की फुल्की जो एक म्यूजिकल हवा आपके लिए पूरी दिन भर हम चलाते हैं वो है लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। म्यूजिक जो है वो आपके माइंड को इतना ऑक्यूपाइड रखता है कि नेगेटिव थॉट्स काफ़ी कम आते हैं। मैं ना नहीं कह रही कि नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आएंगे, हाँ अगर संगीत के आसपास आप नहीं हैं तो डेफिनेटली वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं दे कीप ऑन लिंगरिंग। लेकिन आप जो हैं अपने म्यूज़िक के साथ में जुड़े रहेंगे, अपने पसंदीदा गाने आप लोग हमें लिख के भेजते हैं, लेकिन अपॉलजीज हम आपके लिए वो यहाँ प्ले नहीं कर सकते क्योंकि प्लेलिस्ट ऑलरेडी लगी होती है। और जब आप प्लेलिस्ट सुनते हैं तो आप कहते हैं आहा क्या बात है, वाह वाह मज़ा आ गया। तो ऐसे ही मज़ा चलता रहेगा और एक घंटा अभी, क्योंकि 7 से 10 बजे तक आ जाती है आपकी दोस्त अश्विनी आप सबके मनोरंजन के लिए। फैंटास्टिक फ्राइडे में ऐसे ही गीत लगते हैं जहाँ पे आपके पैर थिरकते हैं, चाहे आप बेड पे बैठे या सोफे पे बैठे या किचन में काम कर रहे हैं तो किचन का काम आसान बन जाता है विथ मी। किचन का काम आसान करने के लिए सुनिए द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: Forgotten memories refreshed like a gold. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Like a gold.
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
5: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com, कॉल 0208-767-7627।
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
5: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: welcome. This is the third hour of the evening show with Ashwini on Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Greater Manchester. उदित नारायण की आवाज में डर फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत. 90s वाले बच्चे खुश हुए होंगे. क्या सुपर डुपर हिट हुई थी ये फिल्म, बाप रे. एंड डर के बाद में 90s की काफी लड़कियां डर के रहती थी. एंड उसके बाद हमने सुनाया आपको आशा भोसले की आवाज में अली बाबा, अली बाबा एंड 40 चोर और 40 चोर एंड नहीं यार और 40 चोर. इन 1988 फिल्म रिलीज हुई थी खतूबा आशा भोसले की आवाज में. इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये जीनत अमान के ऊपर फिल्माया गया था, राइट है ना. सो ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट 90s की बात जो होती थी कि लड़कियां काफ़ी डर के रहती थी. तो ऐसा एक किस्सा भी पुणे में हुआ है जहां पे अभी लड़कों को भी डर लगने लगा है अकेले ट्रैवल करने से. एक मोहतरमा जो एक व्यक्ति के प्यार में थी, अब इस पुरुष को वो आके हमेशा कहती थी कि भाई आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे, आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे. तो बेचारे हर टाइम पे ये जो लड़का था 27 साल का, ही इज़ टू से कि नहीं नहीं नहीं. एंड वो लड़की वॉज 25 years old. तो एक दिन ऐसे हुआ कि उस लड़की ने एक छोटे बच्चे की मदद से और 4-5 अपनी सहेलियों की मदद से इस लड़के को किया किडनैप और उसे भगा के लेके गए. अब जैसे ये लड़का घर पे नहीं पहुंचा तो इसके माँ बाप ने ऑब्वियसली देवर वरीड कि अभी कहाँ चला गया, ये आ जाता है 8 बजे तक घर पे, 9, 10, 11, 12 हो रहे, फिर भी देन दे फाइल्ड कंप्लेन. एंड सम हाउ पुलिस ने जो है उस लड़की को और उसके साथियों को पकड़ के निकाला और इस लड़के को कर दिया रिहा. सो इक्वालिटी अब यहाँ पे भी है या इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी, सोचिए.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Laika Gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you could get up to 127 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: ये गीत मुझे इसलिए पसंद है, एक तो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सरगम फिल्म से ये लिया था हमने गीत। अब पसंद क्यों है, तो इसमें इफ़ यू रिमेम्बर जिस तरीके से ऋषि कपूर एक तो वो डफली बजाते हैं, एंड मुझे लगता है पहले के ज़माने के कुछ गाने जो होते थे ना इसमें वर्कआउट कितने अच्छे से होता था। इफ़ आई रिमेम्बर प्रॉपरली तो डफली बजाते बजाते हु वॉज द एक्टर, जयाप्रदा, यस जयाप्रदा आगे आगे इनके पीछे पीछे ये डफली बजाते हुए और कितनी लंबी लंबी वो कूद कूद के वो स्टेप्स लेते हैं ना इस गाने में, इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो वर्कआउट कितना अच्छा हो जाता होगा इनका, टनाधन टनाधन कूदते फानते हुए वो डफली बजाते आगे जा रहे हैं। मेलोडीज ट्रैक, आई जस्ट लव दिस ट्रैक, ऐसे ही मेलोडीज ट्रैक आप लोगों के लाइन अप हैं। नेक्स्ट जो अब आपको सुनाने वाली हूँ दैट इज़ आर्टिस्ट ऑफ द वीक इंदिवर का, मेरे लिए इस सप्ताह का इंदिवर का ये आखिरी गीत होगा बिकॉज अगले सप्ताह नए आर्टिस्ट ऑफ द वीक होंगे। तो एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में रूप तेरा ऐसा, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दैट इज़। एंड आज है फ्राइडे तो लास्ट डे ऑफ द वीक होता है गज़ल, आय हाय हाय हाय हाय क्या बात है, जगजीत सिंह की आवाज़ में कल चौधरी की रात थी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक्स आप लोगों के लिए लाइंड अप है। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Fever Tree Ginger Beer. There's no one quite like you, is there? That fiery character. Warming undertones. Mixed, you make a spirited Moscow Mule. But even on your own, you still have the most delectable kick. Fever Tree. Straight up or mixed. It's a matter of taste.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir. On the evening show.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
7: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but at

0: संत हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: Backstage Siblings. First ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
0: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
4: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक। एंड आप और हम पूरे सप्ताह इतनी मजा मस्ती इंटरेक्शन करते हैं कि फ्राइडे जब मैं जाती हूँ तो इन्हें भी मुस्कुराते हुए निकलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विश्वास है रादर इस चीज़ का कि आप लोग भी पूरे सप्ताह इस शो के दरमियान बहुत बार मुस्कुराए हैं, है ना। क्योंकि हम लोग जिस तरीके की ऐसी बातें करते हैं, जो मैं ये रैंडम से सवाल लेके आती हूँ, कभी कभी ऐसे सवाल जहाँ पे आप बहुत सोचते होंगे, कुछ आपकी प्यारी प्यारी यादें आ जाती हैं और कुछ ऐसा संगीत हो, संगीत के साथ में शायद आपकी और ऐसी कुछ यादें होंगी जहाँ पे आप थोड़ा गहराई से उन यादों के बारे में सोचते होंगे। तो भाई हमारी नाइट सर्विस जो है वो गुड नाइट सर्विस, ओवरनाइट सर्विस है, ज़रूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। एंड हमेशा की तरह इतना ही कहूँगी, प्यार दो प्यार लो। ओए होए, आज तो मैंने गाना भी सुना दिया आप लोगों को। ओके, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ इसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेट करके बताइए। कोई आके आपके मन की बात रीड नहीं कर सकता, आपके सिर में क्या चल रहा है ये रीड नहीं कर सकता, है ना। एंड प्यार से तो सब कुछ पॉसिबल लाइफ में। पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए ना। आई एम श्योर आप लोग कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करते हैं। वीकेंड है, एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए, काम डाउन रहिए, मेडिटेशन करिए, जो चाहिए जाके खरीदिए, खाइए, खुश रहिए। On that note, I have to say, please take care of yourself. Love you all. See you all on Monday.
1: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
3: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
5: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
0: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra?
8: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
9: Atif Aslam live in the UK.
10: Dil diya galla karange na.
8: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
9: Book your tickets now at AXS.
8: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
12: Four beers, please, garçon!
11: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
13: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold रेडियो, Leica रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Leica रेडियो मिडलैंड्स पर।
0: Leica Gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.

मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।
1: आज ऐसा मौका

आज गुजर लो, अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका

0: गाय का गोट।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che. Ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment. Laine avi rahya che. Sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Samir Shah saathe. Hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama. अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655।
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Packed for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
12: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com.
13: T's and C's apply.